0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी भगवान से कुतु से कर, स्वामी भगवान से उतानुभु से कर, स्वामी भगवान से नवत वडिन से कर।
0: एहिन प्यानी उन्वान से गे मरने तुत्ताने सीपत कर्मिन जीवन दायक पूप्यात गैलवी मदायक कुशलाना तपय बट पुद कर्म ओब हम सिटमिन बट सेवे खरान नट अप सुदुसान वाचिन सल की मगन अप यो बट तुति पुदमो क्रिस्तुन महान से गे श्री सर रेटा श्री रुधि रेटा सहभागी बन अप सम शुद्धात्मन विशेन सत्कर्ण लिश अपि अवनतवा आयद सिटिमु स्वामिनी मुल्लु वे पेतर पवत्ना उबगे सुदो सभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप सुदोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगे सभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत्त ऐतिव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद उबगे दयनुकम पावकरे विश्वासे तब मिनेश्वान कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अप सियालंट दयनुकम पाकल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमर्यावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन्हि उबगे कमत्ते इटुकल सील शुद्धवंतेइंद समग अपि सदा जीवनेट सहभागी वीमट सुदुस्सन कल मैनव तवद उन हा समग ओबट प्रशंसा किरीमटद उबगे महिमे वर्णा किरीमटद उबगे पुत्र येसुस क्रिस्तुन वहन्से मगिन अपट वरम दुन मैनव उन्वहन्से मगिन्द उन्वहन्से समगद उन्वहन्से केरेइद सियलु बलते देवी पियानने शुद्धात्मैनन् हा समग एक्वडवसन्ना वू ओब वहन्सेट सकल गौरवयत् महिमयत्